सुना था यहाँ आदमी पूरी जिंदगी अपनी किस्मत स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक लाने में निकाल देता है, पर ढाई घंटे में मेरी किस्मत ऐसे स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सजा मजा बन जाएगी, ये भी कभी सोचा नहीं था।

0: लिए होता है, अच्छे के लिए होता है। सही कहते हैं।
1: The Bollywood King, Bali Brambat, with the best of Bollywood classics every weekday at 1 p.m. Like a radio.

0: is Leica Radio.
1: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
2: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
0: साउथहॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड। ये है लाइका गोल्ड 2।

जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथस्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंधगोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए, अखरी नाम अखरी।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनात जुग जुग एको वेस एक दूजी बोला खोवें लख होवें लखवीस।

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत

0: कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं, परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasun.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
1: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
2: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
3: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
4: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
5: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London soon.
6: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
7: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर। ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS। कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में।
8: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
9: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. Back-to-back hits across the Leica radio network.

0: कोई आसान एक्सरसाइज दो, ये क्या?
1: चलो फिर से करो।
2: ओहो, छोड़ दो प्रताप, इसे छोड़ दो, इससे नहीं होगा।
3: हम विनती करते हैं, छोड़ दीजिए
1: प्लीज सर, नहीं तो हम सब

0: Biker Radio.
1: City Bond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
2: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
1: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
2: Also explore 2026 cruises
1: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're at all protection.
3: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार सीपीडी सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
4: आपके सामने एक रेड बटन है,
5: दबा दिया,
4: नहीं दबाना था।
6: The madness is back, धमाल 4।
7: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
6: Starring अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी। Return in धमाल 4, directed by इंदिरा कुमार।
8: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी।
6: Watch the biggest family entertainer, धमाल 4, in cinemas now.
9: पता नहीं ऐसे dangerous situations में automatically आगे कैसे आ जाता।
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
10: High appreciation.
11: In Dubai.
2: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रहे छे।
10: BAPS मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जाई रहे छे आ पवित्र यात्रा पर।
2: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स।
10: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे।
2: दर्शन पण अने यूरोप पण।
10: सीट्स जल्दी भराई रही छे। आज ज बुक करो स्टार टूर साथे।
2: कॉल 02089002323 द स्टार टूर्स।
10: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
12: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it, you just dial 999. Use the FAST test. F, face, has their face fallen on one side? Can they smile? A, arms, can they raise both arms and keep them there? S, speech, is their speech slurred? T, time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast, make the call, dial 999.
13: Punjab, the biggest tunes. No.

वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मनोरंजन की दुनिया में। स्वागत

0: लंबा संगीत भाई सुनना पड़ा, क्योंकि अचानक क्या होता है कि कोई ऐसा समाचार मिलता है कि आप स्तब्ध रह जाते हैं, आप सुन्न हो जाते हैं, आप ऐसा लगता है जैसे कि जमीन ठहर गई है, आसमान रुक गया है, कुछ हो गया। खैर साहब, जिंदगी यूं ही चलती है, खुशी और हादसों के बीच से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं। एक और मनोरंजन तैयार है। मंगलवार वर्ष 2026 के जुलाई महीने की 14 तारीख हो गई आज।
1: Like a Radio. Let's return to the biggest hits back to back. This is Like a Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Like a Radio mobile app and listen wherever you are in the world. 7 stations, 1 podcast, 1 mobile app. This is the Leica Radio Network.
0: और साहब, आज शायरी की डायरी नहीं खुली क्या? अरे साहब, क्या खोले, वो देखो क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि बाहों की तुझे हार हम पहनाएंगे एक दिन, और सब देखते रह जाएंगे, ले जाएंगे एक दिन। तो भाई ले जाइए ना यार, मतलब नहीं नहीं क्या है कि आप ले जाएंगे ये सोच करके वो तो पीछा छुड़ाने के लिए तैयार बैठे हैं। कब लेके जाएंगे?

भाई बैक टू बैक संगीत के तहत दो गीत हमने सुनवाए आपको, दोनों के दोनों शादी से रिलेटेड। ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाओ भाई। और दूसरा गीत यार तेरे सब नाच रहे हैं, जैसे ही ले जाने की बात हुई तो भाई साथ देने वाले भी आ गए नाचने के लिए, ढोल बजाने के लिए, मस्ती मनाने के लिए बाराती। तो भाई ये दो शादी के गीत जा रहे हैं उन दो परिवारों के नाम जिन्होंने भाई वीकेंड पर धूमधाम से शादी की अपने बच्चों की। भाई एक तो कोस्टास और उनका जो कैप्रियानो परिवार है, और दूसरा जो है कमल विनायक और पूनम विनायक, उन्होंने अपने बेटे की शादी कोस्टास की बेटी क्रिस्टीना से बड़ी धूमधाम से की है। कहते हैं भाई गीत उनके नाम लगा दो, एक नहीं दो चाहिए।

0: तो भाई शिवम और क्रिस्टीना, आपको विवाह की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कह रहे हैं कमल विनायक, पूनम विनायक, अमिता, राहुल और सारे परिवार वाले, और इसके अलावा कोस्टास और उनके परिवार वाले भी। भाई इस मंगलमय जोड़ी को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। यार तेरे सब नाच रहे हैं, खूब धूमधाम से शादी हुई, और भाई खूब धूमधाम से हमने गीत लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि आज 14 जुलाई है, कुछ खास है आज, करेंगे जिक्र आगे चल करके। पहले तो पाउंड का रेट बताएंगे। UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch. Yes, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके याद दिला रहे हैं भाई, पैसे भिजवाने हो हिंदुस्तान तो भाई ये सही समय है। रेट अच्छा चल रहा है, हाँ थोड़ा और बढ़ गया है आज। आज का रेट वो कहते हैं कि फॉर वन पाउंड वी आर गिविंग 128.05 पाउंड्स पर ग्राम, 128 रुपए और 5 पैसे का रेट चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI यूके मोबाइल ऐप। My terms and conditions apply, ye yaad rakhiyega.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
0: फीफा फुटबॉल भाई अपने चरम पर पहुंच चुका है ये महाकुंभ मुकाबला फुटबॉल का। और साहब आपको बता दें कि फुटबॉल में आज वर्ल्ड कप के लिए सेमीफाइनल मुकाबला है, भिड़ंत होगी फ्रांस की और स्पेन की। शाम 8 बजे खेल शुरू होगा, लेकिन बहुत सारे लोग टीवी के सामने और भाई दूसरे माध्यमों से जुड़ेंगे ये मैच जानने देखने के लिए नतीजा। और भाई आपका लाइक रेडियो नेटवर्क भी आप तक जो है सूचनाएं भिजवाता रहेगा। तो आपको बता दूं कि आज फ्रांस का शायद नेशनल डे भी है, क्योंकि कौन से साल में बहुत पुरानी बात है, 1789 में वहां कुछ घटना घटी थी जिसके बाद उन्होंने सेलिब्रेट करना शुरू किया ये दिन। अब देखते हैं कि भाई वो आज के दिन को और विशेष बनाएंगे जीतकर या फिर स्पेन कुछ रंग दिखाएंगे स्पेन के खिलाड़ी। शाम को 8 बजे है, जो कुछ भी होगा हम आप तक पहुंचेंगे, हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बता दें कि हमारे जो स्पॉन्सर है ना, जो ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, पहला सेमीफाइनल है आज, कल भी जो होगा उसका भी इंतजार रहेगा। तो भाई जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और ये बता दूं कि अगर आप हमारे स्पॉन्सर्स को फोन करते हैं किसी लीगल मशवरे के लिए तो भाई लाइका कहना मत भूलिएगा, क्योंकि 15 मिनट्स का कानूनी मशवरा, लीगल एडवाइस, दे विल प्रोवाइड यू फ्री।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
3: Yeah. Like our radio.
4: Lister, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, $7.49. Leela Medium Atta 10 kg, just $3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, $24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, $10.99. And Falcon Paneer Box, $8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for $1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for $3.99. Mido Yogurt 10 kg, $8.99. Karela or Long Dudi, $2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE1 2JU, and 2A Rollout Sale, Leicester, LE5 4UN.
5: White Hill Studios पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
6: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
5: स्टारिंग तरसेम जसड़, गीत घुराया, ते योगराज सिंह।
7: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
8: Create terror.
5: वेखो दस्तार तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नू।
9: एक सिंह दा पुत्ता दस्तार सजाऊगा भी, ते दस्तार लई लड़ूगा भी। Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Tanyo, a premium collection of townhouses and villas.
10: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-396-3-5757. Greens by Danube. Prime location.
9: High appreciation.
10: In Dubai.
11: Leicester Miller is back.
12: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
11: Shin DCS. Expect classic vibes, live energy, and a proper celebration at the Abbey Park.
12: Hosted by the team of Lyco Radio Network, Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
11: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council,
12: Arts Council England.

आंखें बंद करके भाई कल्पना की दुनिया में आइए नौका विहार करें, बोट में बैठ करके घूमें, पानी को देखें और सोचें कहां से आता है ये जल और कहां जाता है ये जल।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: और बहन भाइयों, मनोरंजन प्रोग्राम में अभी अभी जो गीत हमने शामिल किया, ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में और सागर मिले कौन से जल में, कोई नहीं जानता। भाई गीत की शब्दावली तो है ही अच्छी, लेकिन संगीत कैसा लगा आपको? भाई इस गीत के माध्यम से हमने याद किया महान संगीतकार रोशन को, रोशन नागरथ। भाई ये ऋतिक रोशन, इनके पिता भाई राकेश रोशन और उनके अंकल राजेश रोशन, सारा रोशन परिवार जो है काफ़ी जगमगा रहा है। तो आज ये रोशन परिवार अपने भाई पूर्वज महान संगीतकार रोशन का जन्मदिन मना रहा है। तो साहब हम भी थोड़ा सा योगदान दें, क्योंकि रोशन साहब कब जन्मे थे, कौन सा साल था, वाल देख के बताता हूँ अभी। आई थिंक लॉन्ग टाइम अगो रोशन साहब जो है वो जन्मे थे। द ईयर वाज, कौन सा साल था भाई, मैं उस वक्त नहीं था, 1917 था मेरा ख्याल। हाँ 1917 में 14 जुलाई को गुजरांवाला, जो अब पाकिस्तान में है, पंजाब में था उस समय, मतलब एक ही पंजाब था। तो भाई रोशन साहब जन्मे थे और उसके बाद बड़े संघर्ष करते हुए ये मुंबई पहुंचे और भाई इन्होंने धुनें तैयार की और संगीत के क्षेत्र में अपना नाम जो है स्थापित किया। इन पर रोशन परिवार पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, बहुत से लोगों ने देखी होगी। 16 नवंबर 1967 में 50 साल की उम्र में इनका निधन हो गया, लेकिन जो धुने बना करके छोड़ गए हैं उनमें कुछ एक गीत हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बाकी बहुत सारी जानकारी तो आप जानते हैं कि बाली भाई के पास होती है, फिल्मी जानकारी वो भी लेके आएंगे। तो भाई संगीतकार रोशन को श्रद्धांजलि देते हुए अब मैं देख रहा हूं कि समय हो गया है समाचारों का, आइए मुड़ते हैं आज की खास खास समाचारों की ओर। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कार्गो जहाजों पर 20% फीस लगाने के बयान के बाद ईरान का रिएक्शन सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची ने ट्रंप के बयान पर कहा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट की बात सही है, लेकिन 20% शुल्क बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि ईरान उचित और बैलेंस्ड शुल्क वसूलेगा। वो ये भाई खुद वसूलने की बात कर रहे हैं, वो जो अपने ट्रंप साहब थे वो अपने ही तरफ से बता रहे थे कि हम 20% लेंगे, लेकिन ईरान कहता है 20% ज्यादा, हम थोड़ा कम लेंगे। अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट सही कह रहे हैं, जो भी कार्गो शिप्स को हॉर्मुज स्ट्रेट से सिक्योर और आसान रास्ता देगा उसे इस सेवा के लिए शुल्क मिलना चाहिए। उन्होंने कहा ईरान हमेशा से इस स्ट्रेट का प्रोटेक्टर रहा है, रक्षक रहा है और हमेशा रहेगा। 20% शुल्क ज्यादा है, हम ठीक ठीक लेंगे, कब लेंगे लेकिन लेंगे। भारत से आने वाली खबरों में वहां भाई एक कॉकरोच पार्टी का तो आपने सुना होगा, उसके एक नेता ने अनशन यानी भूख हड़ताल रखी हुई है और अब आज उस हड़ताल का 17वां दिन है। अब विपक्ष वाले, क्योंकि सरकार के खिलाफ सत्ता के विरुद्ध जब कोई व्यक्ति कोई संघर्ष करता है तो भाई विपक्ष वाले साथ जुड़ जाते हैं। आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने आज जंतर मंतर पर चल रहे कांग्रेस जनता पार्टी यानी CJP के प्रोटेस्ट को अपनी पार्टी की हिमायत दी है। उन्होंने पर्यावरण कार्यकर्ता यानी एनवायरमेंट जो कार्यकर्ता है सोनम वांगचुक, उनसे अपनी अनिश्चितकाल भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की है। अखिलेश यादव ने भी ऐसा किया है, 17 दिन से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से अपील की है कि वो अपना आमरण अनशन, आमरण मतलब यानी मृत्यु तक अपना अनशन जारी रखेंगे, कुछ नहीं खाएंगे जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी। तो भाई इन्होंने भी, अखिलेश यादव ने भी उनसे उनका ये अनशन खत्म करने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने 100 करोड़ रुपए के मानहानि मुकदमे की चेतावनी दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल शर्मा ने अब्दुल्ला को एक लीगल नोटिस भेजा है और उसमें उनसे वो आरोप वापस लेने को कहा है जिसमें अब्दुल्ला ने कहा था कि बीजेपी उनकी सरकार गिराने के लिए एमएलए को विधायकों को रिश्वत देने की कोशिश कर रही है। अब साहब, सीएम अब्दुल्ला ने 11 जुलाई को श्रीनगर में ऑर्गेनाइज्ड एक रैली में यह दावा किया था कि बीजेपी से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने जम्मू इलाके के कुछ विधायकों से, विधायक भाई एमएलए जो सीनेटर्स होते हैं, जो एमएलए मतलब केंद्र में एमपीज होते हैं, राज्यों में एमएलए होते हैं, तो इसने कहा कि अब्दुल्ला ने कि मेरे एमएलए को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस पर उन्हें मानहानि का सामना करना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस अमीरात के 2 तेल टैंकरों पर आज ईरान ने मिसाइल हमला किया है जिसमें एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई है। इस हमले में 6 हिंदुस्तानियों समेत 8 लोग जख्मी हुए हैं। यूएई स्थित भारतीय एम्बेसी ने इस संबंध में एक बयान जारी करते हुए इंडियन क्रू मेंबर्स की मौत पर शोक व्यक्त किया है। भारतीय शेयर बाजार आज 14 जुलाई को गिरावट के साथ खुले हैं। निफ्टी करीब 24,100 से नीचे, जबकि सेंसेक्स 77,200 पर बिजनेस कर रहा है, कारोबार कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने किन देशों का जिक्र करते हुए कहा कि इन्हें हमारी जरूरत है, हमें इनकी नहीं? अमेरिका के ताजा हमलों के जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया। इसका जिक्र करते हुए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मीडिया को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि अमेरिका इन देशों को सिक्योरिटी मुहैया कराएगा, लेकिन उसके बदले में उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि हमें भुगतान किया जाए, क्योंकि हम दुनिया के एक ऐसे बेहद प्रोस्परस हिस्से की सिक्योरिटी कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, हम इस पर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो हमें इन्हें कुछ पे करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका ईरान की बंदरगाहों की नाकाबंदी करेगा, साथ ही उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी कार्गो जहाजों पर 20% फीस लगाने का ऐलान तो पहले ही किया है। हूती विद्रोहियों का दावा है कि सऊदी अरब के इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर मिसाइल हमला किया गया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने कल सोमवार को सऊदी अरब के अबहा इंटरनेशनल हवाई अड्डे को निशाना बनाया है। हूती विद्रोहियों ने बताया कि ये कार्रवाई सऊदी अरब की ओर से सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किए गए हवाई हमलों के जवाब में की गई है। भारत और अमेरिका ने ट्रेड डील से जुड़ी रिपोर्ट को बताया फेक। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री इंडस्ट्री मिनिस्टर मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी एम्बेसडर सर्जियो ओर ने भारत अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर के आई रॉयटर्स की एक रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज कर दिया है। दरअसल समाचार एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत ने अमेरिका के साथ जल्दबाजी में कोई व्यापारिक समझौता किया है, नहीं समझौता करने से इनकार किया है और डील में बेहतर शर्तों की उम्मीद की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक्सपर इस खबर को पूरी तरह से झूठी, बेबुनियाद और भ्रामक भटकाने वाली बताया है। वल ये थे आज के प्रमुख समाचार। और भाई, फुटबॉल वर्ल्ड कप फीफा से जुड़ी ये खबर तो आप सुन ही चुके हैं कि आज सेमीफाइनल का पहला मुकाबला फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। शाम 8 बजे मैच शुरू होगा यहाँ के समय के अनुसार, और आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम मैदान से सूचनाएं और आप तक पहुंचाते रहेंगे। समाचार समाप्त होते हैं। और भाई, आगे बढ़ने से पहले एक स्वादिष्ट खबर आ गई है। स्वादिष्ट खबर क्या होती है? अरे, स्वाद आता है भाई, बताने में भी सुनने में भी। और वो खबर क्या है, कहाँ है? यहाँ है, इंडिया से लोकप्रिय स्ट्रीट फूड प्लेस। कौन सा है फूड प्लेस? बीकानेर वाला इज नाउ ओपन इन गैंट्स हिल एल्फोर्ड। खुल रहा है, सेलिब्रेट द ग्रैंड ओपनिंग दिस वेंसडे, यानी कल। 15 जुलाई को शाम 4 बजे विद योर फेवरेट लाइका रेडियो नेटवर्क प्रेजेंटर्स। कौन आ रहे हैं भाई? शर्मा जी आ रहे हैं क्या? हाँ शर्मा जी भाई, क्या शर्मा जी फेवरेट नहीं है क्या? हाँ और भी भाई, तो पहुंच जाइएगा वहाँ। टेस्ट फेमस छोले भटूरे, राज कचोरी, मिठाई, चाट्स एंड मोर एट बीकानेर वाला इलफोर्ड 513 एंड 519, 513 से 519 तक, क्रैनब्रुक रोड इलफोर्ड में, पोस्ट कोड IG26HA, बीकानेर वाला। द लेजेंडरी टेस्ट सिंस 1905 से कारोबार कर रहे हैं, इसीलिए तो भाई इनके स्वाद की चर्चा घर घर जन जन तक होती है। तो डोंट फॉरगेट, टुमोरो इज ग्रैंड ओपनिंग इन इलफोर्ड। पहले भी इनकी जो ब्रांच खुली है भीड़ लगी रहती है वहाँ, और वो वेस्ट लंदन में थी, अब ईस्ट की तरफ ये ओपनिंग कर रहे हैं। टुमोरो एट 4 PM, 513 क्रैनब्रुक रोड इलफोर्ड। सी यू देयर।
4: ये है लाइका रेडियो Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: बाहर है प्रॉब्लम, घर में भी है प्रॉब्लम, भाई दो दो क्यों रखी हुई है जरा पूछो इनसे। नहीं ठीक है, घर में प्रॉब्लम है, सबकी होती है भाई, हाँ आप उसे घर में प्रॉब्लम कहें या घरवाली कहें, पर बाहर भी क्यों रखी हुई है, घरवाली बाहर वाली दो दो प्रॉब्लम्स। साहब दो गीत हमने सुनवाए आपको, और बता दूं कि जो पहला गीत था वो हमने फिल्म से लिया था, मोहब्बत की ना महबूब की मेहंदी फिल्म से लिया था, पसंद आ गई है एक काफिर हसीना, उम्र उसकी 16 बरस 6 महीना, देखो कब से काउंट करना शुरू कर रहा है बंदा, 16.5 साल की होगी। और डोंट वरी बी हैप्पी ये गीत था फिल्म तूफान से। तो बैक टू बैक संगीत से घंटे की शुरुआत हुई, दिस इज द लास्ट एंड फाइनल आवर ऑफ मनोरंजन प्रोग्राम टुडे। आपको बता दूं कि मेरा नाम रवि शर्मा है और मैं दोपहर बाद 1 बजे तक आपकी सेवा में हाजिर हूं, उसके बाद आपके मेजबान होंगे बाली ब्रह्म भट्ट। तो लीजिए साहब एक बार फिर से बता दें आपको पाउंड का रेट SBI UK की ओर से।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK offering 128 pounds and 5 pence. Pounds pence kya 128 rupees and 5 paisas. 128 rupees 5 paise. They are offering 128.05 rupees for 1 pound. Or, you can transfer via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions apply. Achha rate hai. Aap paise bhijwa sakte hain Bharat aajkal.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: List up, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10kg, 7.49. Leela Medium Atta 10kg, just 3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2kg, 10.99. And Falcon Paneer Box, 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils, 1.5kg for 3.99. Mido Yogurt 10kg, 8.99. Karela or Long Dudi, 2.99 per kilo. Offers one from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE1 2JU, and 2A Rollout Hill, Leicester, LE5 4UN.
3: Janan. The Janan and J-Dot summer sale is now on, with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester, or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings, your next look is waiting. Janan and J-Dot summer sale, up to 70% off. Shop in-store and online now.
4: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
5: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-396-3-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: Lester Miller is back.
9: Get ready for a weekend full of color, culture, music.
8: music, food, family fun and live performances.
9: Confirmed artists include Lember Hussein Puri, H-Dami, Roach Killer, Chirag Rao and Shin DCS.
8: Hosted by the team of Laika Radio Network, Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester. An event by 101 Circle in association with Leicester City Council and Arts Council England.
10: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
1: Miss your favorite show on Laika Radio Midlands? You can now listen back at laikaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to laikaradio.com and the Laika Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Did you know that Laika Gold is the UK's first Asian retro station, playing Bollywood classics 24/7 and with your favorite presenters live? Get the tune-in details at laikagold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: और भाना भाइयों, आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं संगीतकार रवि, रवि शर्मा. हाँ, और सच पूछिए तो रवि मुदगल, यानी ये गोत्र है हमारा, यानी रवि साहब का भी और मेरा भी, और हम दोनों का संबंध भी एक ही एरिया से है, दिल्ली के आसपास जो हरियाणा है वहाँ से. और भाई रवि साहब की जीवनी का जितना मैंने अध्ययन किया और जितनी बातें उनसे की, तो भाई वो राज खुलते गए और पता चला कि हम एक ही खानदान से, एक ही खूनदान से संबंध रखते हैं. हमारी दिलचस्पियाँ एक जैसी, हमारा खान पान, रहन सहन, बोल चाल, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. लेकिन साहब वो महान संगीतकार और हम उनके छोटे से, कहे तुम मेरा बचपन हो, मेरी जवानी हो और मैं तुम्हारा बुढ़ापा. भाई रवि साहब दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अपने गीतों के माध्यम से आज भी जिंदा हैं. और रवि जी न सिर्फ धुने बनाते थे, रवि जी गाते भी थे. सुनवाऊंगा इसी सप्ताह में कोई गीत उनकी आवाज में, लेकिन उससे पहले वो गीत लिखते भी थे और ऐसे ऐसे गीत लिखते थे कि कुछ तो लोग कहेंगे. भाई लोगों का काम तो कहना है, औरों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, परवाह मत करो, ऐसी शब्दावली. रवि जी का गीत, रवि जी का संगीत, लता जी की आवाज़.

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: रवि साहब की बनाई धुन पर भाई लता जी की आवाज आपने सुन ली। अब ये गीत सुनिए, आगे बढ़ते हैं। बता दूं आपको कि रवि इस सप्ताह के आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं, तो उनके संगीत पर सवार कई आवाजें आपको सुनने को मिलेंगे, कई गीत गूंजेंगे रवि साहब के म्यूजिक डायरेक्शन में तैयार हुए। तो इस सप्ताह में जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अनहेर इज द सॉन्ग नेक्स्ट।

0: महेंद्र कपूर की आवाज में ये गीत आपने सुना भाई। फिल्म का नाम यहाँ लिखा परिवार, अगर ये परिवार है तो संगीत जरूर कल्याण जी आनंद जी का रहा होगा भाई। ये तो जो सामने स्क्रीन पर आंकड़े दिखाई देते हैं लिखा होता है वो पढ़ के बोलते हैं, कुछ अनुभव से बताते हैं। एक बात बताएं आपको, क्रिकेट का जिक्र फिर करने को जी चाहता है। 10 ओवर तक इंग्लैंड का कोई विकेट नहीं गिरा था। बता दूं आपको, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया ये वनडे इंटरनेशनल बर्मिंघम में खेला जा रहा है मैच। इंग्लैंड ने टॉस जीता, बैटिंग करने का फैसला किया और भाई 10 ओवर तक मेरा ख्याल है 50 से ज्यादा रन उन्होंने बना लिए थे और कोई विकेट नहीं गिरा था। लेकिन इस समय का स्कोर अगर आप सुनना चाहते हैं, 16 ओवर्स के बाद इंग्लैंड हैज लॉस्ट 5 विकेट्स एंड दे हैव स्कोर्ड 80 रन्स ऑन द स्कोर बोर्ड। तो इंग्लैंड का स्कोर 16 ओवर्स के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 80 रन है। तो जोड़े रखेंगे हम आपको क्रिकेट से, सुनते रहिएगा लाइक का रेडियो नेटवर्क।
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली।
2: हैप्पी हलवाई ब्रिंग्स योर टेस्ट बड्स ऊडल्स ऑफ हैप्पीनेस विद ऑथेंटिक गुलाब जामुन, रसमलाई, मोतीचूर लड्डू एंड मच मोर। विजिट happyhalwai.com।
0: लाइक का रेडियो नेटवर्क,
1: ये है लाइका रेडियो।
3: This superhit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
0: ठहरिए भाई, गीत सुनवाने से पहले एक संदेश आ रहा था और वो जो है खुल नहीं रहा था, अभी खुला है। लेकिन बात तो पहले खुल चुकी है, बता दें आपको, इंडियाज पॉपुलर स्ट्रीट फूड प्लेस बीकानेर वाला। ये बीकानेर भाई शहर है, राजस्थान में है ना। हाँ, आप देखिए, अजमेर वाला नहीं, बाड़मेर वाला नहीं, आमेर वाला नहीं, बीकानेर वाला दुनिया भर में मशहूर हो चुका है और लंदन में इसकी पहले भी दूसरे के इलाकों में ब्रांचेस खुल चुकी हैं, लोग स्वाद ले चुके हैं। अगर आपने अभी तक इनकी भाई फूड्स का स्वाद नहीं चखा है तो बता दें, कल इल्फड में गैंट्स हिल में ओपनिंग हो रही है और शाम 4 बजे से भाई द्वार खुलेंगे, वहाँ पहुँचिएगा। कल वेंसडे 15 जुलाई को फ्रॉम 4 PM विद योर फेवरेट लाइका रेडियो प्रेजेंटर्स, जो वहाँ पर बड़ी धूमधाम से बीकानेर वाला का नया स्टोर खुल रहा है। टेस्ट फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई, चाट्स एंड मोर एट बीकानेर वाला इल्फड। भाई एक बात बताइए, जो राज कचौरी इनकी बहुत ही, एक तो काफी अच्छे साइज में है, जैसे एक कचौरी खा के ही पेट भर लो जाए, लेकिन दूसरा ये इसका स्वाद कुछ बड़ा अनोखा है। सचमुच में राज कचौरी लगती है, राजस्थान की कचौरी कहे या राज परिवार की या शाही परिवार की भाई स्वीट डिश कहे, मीठी डिश भी, नमकीन डिश भी, चाट से। तो एड्रेस बता रहा हूँ मैं, नोट कर लीजिए, 513-519 क्रैनब्रुक रोड, इल्फड, IG2 6HA, बीकानेर वाला। 1905 से लोगों के स्वाद की चर्चा का विषय बने हुए हैं। आइए वादा करें, कल मिलने का इरादा करें इल्फड में।

0: breaks are brought to you by Southall Travel.
1: और साउथ हॉल ट्रैवल वाले याद दिला रहे हैं कि भाई FCDO द्वारा जो एडवाइस दी गई थी ना कि दे हैव लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रैवल टू दुबई. कॉल साउथ हॉल ट्रैवल फॉर द मोस्ट कंपेटिटिव दुबई डील्स ऑन 0208-574-8410. At all protected.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels, or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Leica Radio.
2: आपके सामने एक red button है.
3: दबा दिया.
2: नहीं दबाना था.
4: The madness is back. Dhamal 4.
5: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
4: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in Dhamal 4. Directed by Indra Kumar.
6: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
4: Watch the biggest family entertainer Dhamal 4 in cinemas now.
7: पता नहीं ऐसे dangerous situations में automatically आके कैसे आ जाता.
8: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
9: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
8: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
9: गारंटेड.
8: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल
9: फोन 0208-574-8410.
8: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208-574-8410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
10: Are you a nurse, physiotherapist, occupational therapist or paramedic? Would you like to work office hours, enjoying every weekend off and no night shifts? At Capita, we are seeking hybrid clinical assessors based at various locations across the Midlands, with remote working possible for those who live outside the area. We offer a starting salary of £39,500, comprehensive training and ongoing CPD, plus a host of other benefits. Interested? Search Capita Health Assessment Jobs today.

ऐसे गीतों को भाई न पढ़ने की जरूरत न लिखने की जरूरत, ये याद हो जाते थे सुन के ही। अब इतने पुराने गीत लेकिन साहब शब्दावली देखिए, चले ये मुबारक जश्न दोस्ती का। दिल का किसको गम है, आज दिल की कीमत जाम से भी कम है।

0: पीते पिलाते ही रहने की रात आई। भाई आज मदन मोहन जी को भी ट्रिब्यूट पेश करेंगे, संगीतकार रोशन जिनका भाई जन्मदिन है, उनकी बनाई धुन, ये उन्हीं की बनाई धुन सुनवा रहा हूँ मैं आपको। और अब जा रहा हूँ आपसे इजाजत लेके, जाते जाते बता दूं मिलिंद गुणा जी उनका भी आज जन्मदिन है। सुधा शिवपुरी माँ के रोल में बहुत फिल्मों में देखा होगा इन्होंने, इन्हें आपने, तो उनका भी जन्मदिन आज ही पड़ता है। 1937 में जन्मी थी।
1: यार मत जा,
0: जाना पड़ेगा यार, जाना पड़ेगा
1: यार मत जा,
0: देख जाना पड़ेगा। सोनू भाई मत रोक मुझे, मैं बता रहा हूँ आपको, अगली मुलाकात कल होगी 10 बजे की खबरों के बाद।

0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, एवरग्रीन कवाली हम ट्रिब्यूट तो करते हैं जिनका सालों साल और महीनों महीनों हम ये जब भी प्ले करते हैं तो इतने सारे मैसेजेस आ जाते हैं। हम याद कर रहे हैं रोशन लाल नागरथ को। जी हाँ, 14 जुलाई 1917 बॉर्न इन गुजरनवाला पंजाब, 109th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रोशन लाल नागरथ, एन एसराज प्लेयर, कंपोजर, हारमोनियम प्लेयर एंड साथ साथ में दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी वो बजाना जानते थे जैसे कि सरोद। अब देखा जाए तो बचपन से ही इन्होंने तालीम शुरू कर दी थी। देखा जाए तो मैरिस कॉलेज इन लखनऊ, वहाँ पे पंडित रतन जांकर, ही वॉज द प्रिंसिपल, ही गॉट ट्रेनिंग अंडर हिम एंड देन ही लर्नड हाउ टू प्ले सरोद थ्रू अलाउद्दीन खान ऑफ मैहर घराना एंड देन ऑल इंडिया रेडियो में वो स्टाफ आर्टिस्ट बन गए फॉर एसराज प्ले करने के लिए। 1940 से लेकर आई थिंक इट वॉज 1940 to 1948 ही स्टार्टेड प्लेइंग एसराज फॉर ऑल इंडिया रेडियो। देन ही क्विट द जॉब फॉर फेम एंड फॉर्च्यून। कहाँ पे? बम्बई नगरी। दैट्स राइट, ही डिसाइडेड टू गो टू बॉम्बे 1948। एंड देन ख्वाजा खुर्शीद अनवर जी, जिन्होंने उनको ऑल इंडिया रेडियो में भी चांस दिया था, उन्होंने उनको असिस्टेंट रख लिया इन द फिल्म सिंगार 1949 की। एंड उसके बाद केदार शर्मा, उन्होंने एक फिल्म का चांस दिया इनको एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, क्योंकि खुर्शीद, ख्वाजा खुर्शीद अनवर जी ने तो उनको असिस्टेंट बनाया था उस फिल्म में सिंगार में। इसमें उनको म्यूजिक डायरेक्शन का चांस मिला केदार शर्मा जी 1949। कुछ खास नहीं चली फिल्म। देन बावरे नैन, वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई 1950 की। वहाँ से इनका सफ़र शुरू हुआ। फिर तो मल्हार फिल्म, क्या गाना है उसका, मुकेश जी का मैं सुनाऊंगा आपको। देन शीशम, फिर अनहोनी 1952 की, नौबहार 1952 में। नौबहार फिल्म में एक भजन था, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, वो लता जी को उन्होंने गवाया, तो वो भी सुपर डुपर हिट हो गया। अब आगे तो मैं बोलता ही जाऊंगा क्योंकि अवार्ड मिला था इनको ताजमहल के लिए। फिर 35 फिल्में, 19 साल में 35 फिल्में की इन्होंने। What a major achievement! 1948 से लेकर 1967 तक इन्होंने 35 फिल्में की। And he during the last years, 16th of November 1967 तक, he had a chronic heart trouble for 20 years, 20 साल तक, मतलब 30 साल की उम्र से 50 तक इनको छोटा प्रॉब्लम तो हुआ ही था, लेकिन बढ़ता गया। एंड देन ही हैड अ हार्ट अटैक इन मुंबई व्हाइल अटेंडिंग अ सोशल गैदरिंग ऑन 16th नवंबर 1967 एट द एज ऑफ 50, सच ए यंग एज। वी आर रिमेम्बरिंग रोशन लाल नागरथ, दिस आवर उनकी कवालियां हैं। तो कवाली के मूड में बाद में जब इनकी कवाली पूरी हो जाएगी तो मैं दो कवाली और दे देता हूँ जो इनकी म्यूजिक की नहीं थी, इनका म्यूजिक मतलब इट वाज नॉट हिज कॉम्पोजिशन, दूसरे थे, लेकिन इस आवर में सिर्फ कवालियाँ होंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट आवर में रोशन लाल नागरथ के मशहूर गाने सुनते जाएंगे और लुत्फ उठाएंगे। आगे सरप्राइज है और भी, सुनते जाइएगा। मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स, अवेलेबल ऑन 1035 मीडियम वेव, डीएबी, एलेक्सा, गूगल होम एंड laikagold.com। ऑल्सो अवेलेबल ऑन रेडियो प्लेयर ऐप एंड इट्स द 371st डे ऑफ लाइका रेडियो मिडलैंड्स। एंड सैंडी शाह विल बी कमिंग एट 4 PM हियर एंड ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स इट्स गोना बी राज पत्तन।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can fetch you up to £128.05 Indian rupees to a £1 in British sterling. I corrected myself there. £1 in British sterling can get you up to 128.05 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Amantrika और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 p.m. Show starts 7 p.m. Tickets book kare demontforthall.co.uk
4: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: Birmingham Indian Film Festival is here. Experience groundbreaking premieres, powerful documentaries, restored classics and the very best of British South Asian cinema at Midlands Arts Centre and Lockworth Cinema Wolverhampton. Discover stories of courage, identity, motherhood, disability, love and change. Plus meet the filmmakers through exclusive Q&As and panel discussions. Don't just watch cinema, experience it. Book now at birminghamindianfilmfestival.co.uk. Radio partners, Leica Radio Network.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
7: आफ्टर द स्मैश हिट रन इन 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist. Coming to the Belgrade Theatre, Coventry, 16th to the 19th of July. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, panto fun for all the family.
8: Radio partner Leica Radio.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beat, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
12: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
11: Jaimin Foods, desi cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
13: Ye hai Leica Gold.

0: basmati rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।

0: Listen to the freshest hits added daily on Leica Radio. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits.
1: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में.
2: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount. Plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
0: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows. Cool music for a super hot summertime on the Leica Radio Network.

0: Listen to the freshest hits added daily on Leica Radio.
1: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में.
2: Lester Miller is back.
3: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
2: Roach Killer. Get ready for big tunes, big vibes and a massive live performance.
3: Hosted by the team of Leica Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
2: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
3: Arts Council England.
0: Come on, England. Roar it, score it. Bring the World Cup home. All the best to England from Leica Radio Network.
4: Leica Radio.
0: Pay close attention and name the film of this cracker classic.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: It's time for everyone's favorite ride, the Radio Wally Roller Coaster.
2: List up, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, $7.49. Leela Medium Atta 10 kg, just $3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, $24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, $10.99. And Falcon Paneer Box, $8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for $1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for $3.99. Mido Yogurt 10 kg, $8.99. Karela or Long Dudi, $2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE12JU, and 2A Rollout Sale, Leicester, LE54UN.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
4: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं. एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है. शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स. दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स.
5: The Janan and J.Dodd summer sale is now on, with up to 70% off stunning fashion and accessories for every summer occasion. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester, or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk. New styles, big savings, your next look is waiting. Janan and J.Dodd summer sale, up to 70% off. Shop in-store and online now.

0: weddings, celebrations, corporate events. At Rugosan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit Rugosan.com to begin your journey. Rugosan, locate, design, manage, cater.
1: आपके सामने एक रेड बटन है
2: दबा दिया
1: नहीं दबाना
3: द मैडनेस इज बैक धमाल 4
4: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा
3: स्टारिंग अजय देवगन अर्शद वारसी रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी रिटर्न इन धमाल 4 डायरेक्टेड बाय इंदिरा कुमार
5: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी
3: वॉच द बिगेस्ट फैमिली एंटरटेनर धमाल 4 इन सिनेमास नाउ
6: पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410 साउथ हॉल ट्रेवल Protected.
8: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है
9: Order online at pujasweets.com. From barfi, laddus, gulab jamun to samosa and gathia. From catering starters to dessert. Pooja Sweets and Savories.
10: अभी कॉल कीजिए 0116-202-1222 or visit Melton Road, LE4-5EA.
9: Pooja Sweets and Savories.
11: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
12: Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: उसके सामने एक रेड बटन है, नहीं दबाना था।
1: The madness is back, धमाल 4।
2: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
1: Starring अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख and जावेद जाफरी। Return in धमाल 4, directed by इंदिरा कुमार।
3: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
1: Watch the biggest family entertainer, धमाल 4, in cinemas now।
4: पता नहीं ऐसे dangerous situations में automatically आगे कैसे आ जाता।
5: The voice that defined a complete era. Ah, the songs that touched millions. She's coming to London soon.
6: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
7: Punjab, the biggest tunes.

0: Biker Radio.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
2: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग।
0: कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
3: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-39-63-5757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
0: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. The greatest Asian love songs across the Leica Radio Network.